पातशाही दसवीं कवि उपार पिनती चौपाई हमरी करुहा दया पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हादे मोय बचा सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर छानी करद करिय सब पैरन को संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा तूर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाट कोई अब न त्याऊ जो पर चाहू से तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे ऊपर मरण काल का त्रास नरे पूजो सदा हमारे पचा श्री असतोज जू करिहो रचा राख लिहु मोहे राखण हारे साहिब संसाए प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता कार पाए ब्रह्मा बवतरा कार पाए शिव जू अवतरा कार पाए कार विशन प्रकाशा सगर कार का किया तमाशा जवन कार जोगी शिव कियो वेद राय ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लो सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन कार सब जगत बनायो देव दैत जशन पुजायो

सेवकन को सब गुण स दियो सतरण को फल मोबद कियो घट घट के अंतर की जानत परे बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सपारु कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाई साधन के सुखी एक एक ही पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जबुद कर करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकारख करत हो कब हो तुम मैं मृत देह तर सब हो जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद रियालम निरंकार निरपकार निरलंब आद्य नीलनाद सांब

मूढ़ कर भेद न जानत। महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चिंतन भव। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तू है तेती। तुमरा रखन जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सुरूपा रंग प्यो राव की फूपा। अंड जेर से तरकीनी उत्पर खान बहर रच दीनी। कहूं पुर राजा वह बेटा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सुगरी सिर दिखाए अचंभव आद जगार सुरु संभव। अवरछा मेरी तुम करो सिख पार सिख संगर। दुष्ट जित उठवत पाता सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे। पुरख जन पा परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे। जो काल को एक बार त्याए हैं ताके काल। निकट नह अहर शा हुए तन सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो। रहद सहद कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वय सके न कोई। एक बार जंत में संभारा उकार फांते ताहि उपारा। जिनर नाम तिहारू कहा दार्द दुष्ट होते रहा।

बचाए। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आखतरे नियान्यो। राम रही पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र बेसब, बोपीत कहे हम एक न जान्यो। सिरिय सपान कृपा तुमरी, कर मैं न कहो सब तो बखन दोहरा। सगर द्वार को शाड़ के

हो तुहारू द्वार, बाहे गहे के लाज आस, गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तै पास सह सेती, मन बजियां बधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आईया, शब्द तां गावू हरी केरा, मन चनी बसाया।

पइयो सत संतोख बिचारु अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबस अदारु जे को खापै जे को पुंचै तिसका होए उदारु एहे बस्त तजी नह

तृतीया भैसमणा भैसमा भय भैसमाद जन बुझ्याथ न्याया स्वादो प्रवखे रंग राचन रहे गुर के वचन पदार्थ लहे ओ जाते तो काठन हारो जाके संग तरे संसारा जन का सैव को संवड़ भाखी जन के संग एक निवलाखी गुण गोविंद कीर्त जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद साचो जुगाद साचो है पै साचो नानक हो सी पै साचो अश बदे

आप सगो कर कछ ना जना भय, हर हर नाम हृदय सब ते होवै। मन बेचे सतगुर खें पास, ते सेवक खें कार जरास। सेवा करत होए नह कामी, दिस को होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करहे, नानक सो सेवक गुर की मतले। भी सो विसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस दे हर नाओ, अनक बार गुरख मल जाओ। सर्वन दान जी का दाता, ओ आठ पहरो पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परमा।

चौधरी उतर समैला बैन सो जाए हो मैं विख फैला हो अचंत बसे सुख नालो सास ग्रास हर नाम समाला शाड़ सियाण पो संगली मना सा संग पावे सज तना हर पूंजी संज करो व्यवहारा।

अनंता। मंत्र जाप एक भगवंत एको एक, एक हर आप पून पूर रिहो प्रव्याप। अणक विस्तार हो एक दे भय एक अराध पराछंद गए। मंत्र अंतर हो एक मृवराता। गुर

भोजन का प्रसंगीत रसना जपति हर हर नीत पली सो करनी शोभा तन वंत हृदय वसें पूर्ण गुरमंता।

कहोगा तो ता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन को मान कौन अवमान। जय स्वरूप केवल जगदीसा तहै शालो शद्र लगत कंकीसा। जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै तै किसे भूख कवन त्रवतावै। कर्ण करावण करने हार नानक करते का नाहि समार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सत भाई।

का जी जंद के ठाकर आओ आपे बर्तन हारो नानक एको पसरिया दूजा कै दस्टार हो अष्टपदी आप कथे आप सोने हारो आप एका विस्थारो जां तिस भावे तां सष्टो पाए अपने भाणे लए समाए तुम ते भैना नहीं किछ होए आपण सूत सब जगत परोए जां को प्रभु जी यो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत कबेता नानक सगल सिष्ट का जेता जी जंतर सब तां के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जैसो राख तिस कोई न मारै सो मुआ जिस मनो बसारै तिस तज अवर कहां को जाए सब सर एक निरंजन राय जी की जुग तो जा कै सब हाथ हो अंतर बाहर जानो साथ हो गुण दान बेअंत पार हो नानक दास ना बलहारा

अवतारा। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुहाओ। आठ पै प्रो पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा। सुन उपदेस हिरदे वसावो, मन इच्छे नानक फल पावो। हल्द बल्द लेहो सवार, राम नाम अंतर उर तारा। पूरे गुरखी पूरी दिखिया, जिस मन वसै ते साज परखिया। मंत्र नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच वपार करो वपारी, दरगह निवह खेव तमानी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बौर न आवै जाहे। तिस्ते दूर कह को जाए, उबरे राखण हान त्याए। नर पौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभु राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोय न पहुँचन हार। सरूपर टंडा गुरसूरा, नानक तांके कार्ज पूरा। मद पूरी अमद जाकी दृष्ट, दर्शन पेखता उदरत थ्रष्टा। चन कमन जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन वसे सहोत निहालो, ताके निकट नियावत कालो। अमर पय अमरा पद पाया, सात संग नानक हर त्याया। सलोका ज्ञान अंजन गुरदिया, ज्ञान अंधेर बनासो। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। अष्टपदी

दीवड़े गया बुझाए, जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहित, अमृत के दाते दसां पातशाहियां दी जोत, साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा वेले दे सज्जे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे अति सत्कार योग सन्मान योग सतसंगी जनों, गुरदेव दी बड़ी बख्शिश हुई है आप सब गुरु की हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुरु की अमृतमयी बाणी दे रस भिन्ने कीर्तन मेरे तो पहला गुरु करके रागी जथे पासों सरवण कर रहे सी। तो आओ समा है जी लड़ीवार चल रही शेख फरीद साहब दे श्लोकां दी विचार दा। विचारां नूं आरंभण तो पहला फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सेवक परिवार वालों उन्हां दे बच्चियां वालों रल मिल के श्री सुखमणी साहब दे पाठ करवाए गए।

क्या तू सोया जाग ए आना, तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, सब घट पीतर हाट चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हिरदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दा देश अंधियारा। कहरवदास निदान दवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। कहरवदास निदान दवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागी हो शामा वेले दे सज्जे दवाना दियां आप जी ने हाजरियां भरियां। सतसंग जी एक दो जरूरी बेनतियां ने कि 15 तरीक तो लैके ते 23 तरीक तक गुरद्वारा साहब विखे विशेष समागम हो रहे ने, जिन्हां विच भाई लखविंदर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर वाले वह पहुँच रहे ने। तो आप संगत जी ने वध तो वध हाजरियां भर के पावन बाणी के कीर्तन सरवण करने। इहदे नाल ही गुरद्वारा साहब की नवी जिहड़ी इमारत है उहदा टक, जिवें तुसीं पिछे जे पार्किंग लाट दे विच वेखो ते सब तो अखीर उत्ते उत्थे नवें गुरद्वारा साहब की उसारी होण लगी है। तो इस करके 20 सितंबर दिन ऐतवार नूं उत्थे टक लाया जाएगा, जिस विच श्री दरबार साहब दे अरदासिए सिंह भी पहुँच रहे ने। तो पंजां प्यारियां दी अगवाई दे विच इह सारा प्रोग्राम 20 सितंबर नूं दुपहरे 1 बजे दे करीब होवेगा। तो आप संगत ने हाजरियां भरनियां। तो 13 तरीक नूं खंडे बाटे की पौल छकाई जानी है। जिस प्राणी ने खंडे बाटे की पौल प्राप्त करनी होवे वह अपना नाम बार डेस्क उत्ते लिखा सकता है। तो फिर बेनती है 15 तरीक तो लैके 23 तरीक तक हजूरी रागी श्री दरबार साहब भाई लखविंदर सिंह ते होर रागी जथे जिहड़े ने ओ आप जी नूं पावन बाणी दे कीर्तन कथा विचार सरवण कराउणगे। तो आप जी ने 15 तरीक तो लैके 23 तरीक तक विशेष दवाना विच हाजरियां भरनियां जी। तो इत्थे ही दवान की हुण समाप्ति है। जाण वालियां संगतां नूं बेनती है गुरु के लंगर तैयार ने, आप जी ने लोड़ मुताबक छक के जाने। सारयां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

करे अरदास विसर नाही पूरन गुण दास दर्शन प्यासी दिनस रात चितवों अंधर नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत सुख होटल गुरु सेविया सहस बाय दर्शन परस्यां गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दिंदूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह शेर शाह देशाह जिस पास बैठे हां सोही है सबना दा विसा जिस पास बैठे हां सोही है सबना दा विसा सतनाम वाहिगुरु साहिब जी तलंग महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारे लीतड़ाला बरंगाए मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सिजे जाए ए तन माया पाया प्यारे लीतड़ाला बरंगाए मेरे कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजे जाए हों कुरबाने जाऊं मेहरबाना हों कुरबाने जाऊं हों कुरबाने जाऊं ते ना कह लैण जो तेरा नाम लैण जो तेरा नाम ते ना कहूं सत कुरबाने जाऊं रहाओ काया रंगन जे थिए प्यारे पाइए नौ मजीठ रंगन वाला जी रंगे साहिब ऐसा रंग न डीठ जिनके चोले रतड़े प्यारे कत कंत न के पास धूड़ ते न कीजे मिले जी कहो नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे नानक कामन कंते पावे आपे ही रावे आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते पावे आपे ही रावे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तलंग कर पहला तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारे लीतड़ा लाभ रंगाए मेरे कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजै जाए वाहिगुरु साहिब जी जैसा सतगुरु सुनिंदा
ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ।

और इसे कितनी संतुगनी सचो जाते आया उन्हें मंदा पैन रखे कर सुकरे धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बनन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिशी अगला नहीं देवे।

पौड़ी चेतन सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा आपे देवड़ी आईया पे कर्म कराइंदा वड्डो वड्डा वड मेदने सिर सिर धंधे लाइंदा नदरू पट्टी जेकर सुल्ताना काउ कराइंदा दर मंगन पेख ना पाइंदा दर मंगन

चरण जो बोले सो निहाल सात श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: आए उन्हें माफी मंगी है गुरु साहब ने कृपा करके ओ संत माधव दास नूं अपना बंदा बना के पंजाब नूं तोरिया इन्ना कुछ कहिंदे खेमां दे जा चुका है इतिहास गहरा ते डूंगा बोलदियां तो गलतियां हो जांदियां गुरु साहब ते गुरु दी संगत बख्शण योग है। अज दी जो साडी हाजरी है इस पावन दरबार ते आखरी हाजरी असीं दुआ चले जाना है वैनकूवर ते बेअंत संगत ने माए रूपी शीस बख्शी साडे बाई जी अपने दवानियां तो बैठे और ज्ञानी बापू जगदीश सिंह जी और बापू हरदीप सिंह जी ने भी माण बख्श किया है होर भी सिख संगत ने माण बख्शा दर्शन सिंह दवानिया तो बहुत बहुत माण कर दिया गुरु साहब थोड़ा चढ़ती कला बख्शिश करने एक बार सारी संगत कहो नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला इन्नी हाजरी मंजूर कर दो फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: नमस्कार सत्संग जी ए सन भाई गुरप्रीत सिंह जी बंदनी कला वाला टाढ़ी जथा जिन्होंने कुछ समा साढ़े पास सेवा की है अज इन्हों का ये इस फेरी का आखिरी दीवान से शाम को इन्होंने रौस गुरद्वारे साहब वैनकुर चले जाना और मैं इन्हों अपने वालों संगत वालों तो गुरद्वारा साहब के समूह सेवादारा वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा और बड़े मेहनती ये जथा क्योंकि साढ़े नाल इन्होंने हर तरह का सहयोग बख्शिया जिहड़ी भी सेवा इन्हों दी है इन्होंने बड़े प्यार सेवा निभाई एक तो सेवा ना जी सतगुर ने इन्हों बख्शिश किया है गुण ये तो अलावा जी गुरु प्यारो प्रचार श्रेणी सेवा करती वह सेवा दे गिनी जाती है उस सेवा दे गिनी जाती ये साडा प्रोफेशन ये सतगुर ने सानू किरत बख्शी है इस किरत राही असी अपने बच्चे पालने ने ते जी किरत इस तो अलावा जिवें तुसी सेवा करते जे तो कोई भी गुरु प्यारो प्रचार श्रेणी जां प्रबंधक श्रेणी का प्राणी जिहड़ा वह जदों कोई बर्तना की सेवा मशीन सेवा दूजिया सेवावां निभाउंदे ने इस सेवा विच आ जांदियां ने जदों तुसीं इस सेवा विच जुड़दे जे ते गुरु तुहाडे ते त्रुट जांदा गुरु तुहाडे ते खुश हुंदा सो गुरु कृपा करे क्योंकि सेवा ते सिमरन दो चीज़ां ने जिहड़ियां पैरलस चलदियां ने सिख वास्ते जे सिमरन है ते सेवा नहीं तां वी अधूरा जे सेवा ते सिमरन नहीं तां वी अधूरा ये दोवें चलणियां इसे करके आपां हमेशा संगतां नूं इह गल करदे भी जदों तुसीं दरबार जाओ ना कोशिश करो कोई ना कोई आपां सेवा पावें पांच सत्त मिनट ही कोई सेवा जिवें लंगर च जाणा उत्थे बहुत सेवा बीबियां दा ते बहुत बहुत मैं धन्नवाद करदा कि इह लंगर बीबियां नाल ही गुरद्वारे चलदे ने मैं तुहानूं दस्सां बेनती आ क्योंकि इह वेखो तड़के चार पांच बजे बीबियां आ जांदियां ने और रोज़ आण के परौंठे बणाउंदियां ने सानूं छकाउंदियां ने संगतां नूं छकाउंदियां ने खेमा करना उद्यम जिहड़ा इन्हां दा बहुत ज़्यादा पे महाराज ने एवं नहीं कहा माइया रब रजाइया कुछ एवं नहीं बख्शिश किया सो इस करके गुरमु प्यारो अज इन्हां दा भी सत्संग मैं इन्हां नूं जी आया आखदा जथे दा बहुत बहुत धन्यवाद गुरु कृपा करे जिथे भी जाण इन्हां नूं चढ़दी अंगल मैं तुहानूं बेनती करदा असी सरबत दे भले लई हर रोज़ सवेरे शाम अरदास करदे तुसीं भी इन्हां प्रचार श्रेणी वास्ते अरदास करिया करो ता कि यह सतगुर सुचा तो सुचा प्रचार करके सानू गुरु नाल जोड़ सकन तो आप जी नूं बेनती है गुरु कृपा करे चढ़दी अंगल आप दा धन्नवाद तुसी हर एक जथे दा मान सत्कार करदे जे क्योंकि ये मान सत्कार तुहाडियां कमाईयां दे विच बरकतां पाउंदा गुरु कृपा करे चढ़दी अंगल बख्श नूं बहुत बहुत धन्नवाद सारयां दा बीबियां वल्लों सतसंग है एक खास दो बेनतियां कदों करनियां एक ते बेनती है भई आपां 13 तरीक नूं इत्थे अमृत संचार ने अमृत छको जिन्हां दे एक बेनती जरूर है अमृत छक तां लैने आ पर मैं बेनती करां सानू श्री साहब जिहड़ा दित्ता ना गात्रे वाला दित्ता और बीबियां नूं वीरां नूं मेरी खास बेनती है जदों मैं किसे नूं डोरी वाली ते इक निक्की जी करद जी कृपान जी पाई वेखदा ना सच जाणिओ ते मैनूं इह आउंदा भी तुसीं तां गुरू नूं धोखा दे रहे जे अमृत छक के भी तुसीं गुरु नूं धोखा दे रहे जे भई तुहानूं जदों अमृत छकिया सी तुहानूं ए श्री साहब दित्ता सी और जिन्हां ने यह पाया मैं बेनती करा यह सानू पवाया गया वा क्योंकि सानू पवाया गया कि जनेऊ नहीं पहनते तो डोरी वाली कृपान पा दिओ इन्हां नूं असीं गुरमो प्यारिओ क्यों नहीं अपने मिशन दे विच कामयाब होते क्यों नहीं आपां इस नूं कि सानू गुरु ने श्री साहब दिता गुरु ने अमृत छकाया पकार उहदे बख्शे होए आ ते फिर अपनी मर्जी असीं क्यों करदे पए असीं डोरी वाली कृपान पाईए यह बिलकुल नहीं बीबिया नूं बेनती आ छेदे गहने पाउणे मना ने फिर उस तो बाद एक होर गल वैसे तुसीं महसूस ना करो केस रंगने भी मना ने अमृतधारी नूं ये भी मना ने फिर जे तुसीं अमृत छकिया ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੀਬੀਓ ਜਿਹੜਾ 100-150 ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੱਡੂ ਬਸਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੁਮਾਲੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੁਮਾਲੇ ਵੱਜੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਓ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

कोय। जिवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसारे ते कमजात, नानक नामे बासनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो करौं गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश। मेरे मीत गुरदेव, मोको राम नाम प्रगाश। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सै, मिल संगत गुण प्रगाश। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश। राग गुजरी महला पंजवां। काहे रे मन चित मैं उदम, जाया हर हर जीव परया। सैल पत्थर मैं जंत उपाय, ताका रिज़ के आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले, सो तरिया गुर प्रसाद। परम पद पाया, सूके काष्ट हरे आ रहा। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किस की धारिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उड़े उड़े आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खिलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस अट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइये, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख को अंकार सत।